गुणे तीन चार चार पाओ भगत करनी सदाए आओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिट्टो बारे जितन मिले कसम समला जिन करो बेस गणन दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़।

0: नजर दे कसु दे जाए महला पहला
1: पर पुस्तक संध्या बादम सेल पूत सबल समादम बक झूठ बेपूखन सार ते पाल तिहार विचार गल माला तिलक लीलाटन दो धोती वस्त्र कपाटन ये दानस ब्रह्म कर्म सब भोग ने चो कर्म गुरु नानक ने चो त्यावे बिन सतगुरु बात।

रात दिन जीना तको पहो कतिया बामण वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग न टुटई जे तक हुए जोर महल।

कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर हो वे प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण पाखिया का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुनी परेन कहो नानक सच त्याइए सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चिते अंदर।

0: पल्ला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अगे बस जानी है पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल कह मुफ्ती करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जोरू सरनावनी आवे बारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित हुए खुआ सुचे ए ना आखिए वेंज पिंडा धोए सुचे सही नानका जिन मन बसया।

0: पहला जेकर सुतक मने है सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने आन के जिया बाज ना कोए पहला पार जियो है जित हरिया सब कोए सुतक क्यों कर रखी है सुतक पर सोए नानक सूत के बिना तेरे ज्ञान उतारे तो ये महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जेबा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परत्रे परत रूप कन्नी सूतकन पहला एतबारी खाए नानक हंता आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
0: सब सूतक परम है।

परवा नहीं किसे केरी बात सचिना। दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे दीवाने को कल में का हमा तुमा में दर ले लेखा पीड़ छुटे दर ले लेखा पीड़ छुटे।

एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस के कांडिया सादी रे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना के जले के वरते सोई महला दूजा।

0: गना करे कनेरियां खसम ना पाए सा
1: आप गवा आप गवाए हैं सेवा करे ता किस पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
2: जो जी होए सो गवे।

0: वस्तु अंदर वसवावे दूजी होवे पास साहेब सेती हुक्म न चले कहीं बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक से पुगास महला दूजा
1: नाले आने दो पानी अंदर लीक जो तिसदा ताना ते अमला दूजा
0: होए आने करे।

छत्रधारी छत्रिपत शैल रूप शेतनाथ शौनी कर छत्रिपत गाइए विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बालाकार बाजीगर बाण धारी बंदन बरताई।

जय सोध वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभाव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन यर भरन जात यर पात नहन जिह रूप रंग यर रेख पेख को कहना सकत किह अचल मूरत यन पाओ प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत पै सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत काल समुद्र पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बस है संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानिया पयो तिह सम सर सोई तरन गगन नवखंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गोर अर जुन पर तख हर नागर जना मेरी जात विख्यात चंगमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं सुर सरी सलल कृत बारुनी रे संत जन करत नहीं पानं सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुर सरी मिलत नह होए आनं तरतार अपवित्र तर कर मानिय रे जैसे काग्रा करत विचारं भगत भगावत तेह लिखिय ऊपरे पूजिय कर नमस्कारं मेरी जात कुट भांडला टोर टोवंता नित है बनारसी आस पास अब विप्र प्रधान तेह करह दंडौत तेरे नाम शरण आए रविदास दस लिख कत ना छुटिया खिनो खिन भूलन हार बखसन हार बखस ले नानक पार उतार सुकह टल गुर सेवियन अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सो कुरसो चटिया
ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ, ਸਤ

साहिब जी गोजरी महला पंजवा मात पिता पाई सत बंद पर तिनका बाल है थोरा अनिक रंग माया के पेख किछ साथ ना चाल पोरा मात पिता भाई सत बंध पर तिनका बाल है थोरा अनेक रंग माया के पेख किछ साथ ना चाल पोरा ठाकुर तुझ बिन आह ना मोरा मोहे अनाथ निर्गुण

साध संग नानक दर्श पायो बिनसियो सगल निहोरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गोजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बल है थोरा अनक रंग माया के पिखे किछ साथ ना चले पूरा।

0: आणि साधन हे कीर्ती बांध बांध कटारी कोपरिया लोहाणिया दर्पणिया ते चढे आर्या नाल चिराए गए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिद्धि के सुवासा नाल निभाई तिना भी कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी
1: आरे।

शब्द चौंकी अनंतता ही की अरदास कुल जो कर्म आप करनी सच्चे पात कह दियो आप जी ने हजूर कड़ाह प्रसाद जी देख हाजर है सर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरदान दिया।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमारी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चौने चौने सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियह हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख्य संगर हो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलिश करो रण काता। जे अस तुझ तब सर नी परे, तिनके दुष्ट दुखित है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारी, तिनके तुम संकट सब टारी। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दार

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखाने ओ दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के

मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के।

मत उच्ची मत पतदा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सदा।

नूर आर साह कोर साह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दै साहु जिस पास बैठिया सोही है साबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दै साहु जिस पास बैठिया सोही है

तनासरी महल्ला चौथा हर हर बूंद पई हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिललाती हर हर कृपा करहौ प्रभ अपनी मुख देवहु हर निमखाती हर हर बूंद पई हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिललाती हर हर कृपा करहौ प्रभ अपनी

रह ना सकाओ एक राती, ज्यो बिन अमल अमली मर जाई है, त्यो हर बिन हम मर जाती। रहाओ तुम हर सरवर आत अगाह,

आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावे पाती, नानक जन तुमरी शरणाई, हर राखहु लाज पगाती। आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावे पाती, नानक जन तुमरी शरणाई।

0: पावड़ी बड़ी हूँ बढ़ाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जपन करतबा अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरा बस तेरा कर भला तेरा कर आनंद बधाई तुद कर मान महता चेत अपना आप जर सर्व कला भरपूर दे सचत कथा नानक दसन दास तुद आगे बिनवता।
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦੇਵ ਸਰਾ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ।

गए मशक्कत कार, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा।

0: सब जन्म तन तन ला जल नानक
1: ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर काल मूर्त जूनी साहब अंगद प्रसाद महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आसरा जे की तुनी श्लोक महला भले हरि गुरे अपने देव हरि सदवा जिन मानस ते देव ते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार।

ब्राह्मण है खत्री शब्दं शब्दं शूद्र शब्दं प्रागृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने फिर नानक ताका दास है सोई निरंजन।

जिसे तारियो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रिख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप

पायो कुत्ती जो प्यास, पीयूष पीवन की बंचत सेद को बेद मिलायो। पूरन पो मन ठोर बसो, रस बासन सोजो दहन दस्तायो। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जलयन तीर भी पास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु।

0: समरथ गुरु सिर हथ तरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरन अगन हरियो, निसबासुर एक समान त्यान। सो नाम सुनै सुत पान डरियो, पनदास सुहास जगत गुरु की। पारस पेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हथ तरियो।
1: अबराखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हर नाख फारे कर आज, फुंद्रो

0: आख्या जिनका परत पुरे तह काज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज सोदामा अपदा तेरा ख्या जिनका परत पुरे तह काज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज।
1: सतगुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारण तरण खेण मातर जा को दृष्ट तारे शब्द रद विचार काम क्रोध खोवै जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवै जियो जा को देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तो वह जियो सत गोर नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो। चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्रणियो शब्द हर हर जपे नाम नव निध अपै रसन एन सरस सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाये गुरमुख त्याये अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो जन्म गुर उधरो जन्म द्वार हर मनियो जो तो सब सुख ए तो उत तुम वंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु।

0: निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रमत जो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु जप सत कर
1: नानक नाम निरंजन जानिया किनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग भयो सायरा तिन शब्द सुरत के नीवर खाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जे कश कहे ना जाई सोडी श्रेष्ठ सकल तारन का अब गुरु रामदास का मिले बड़ाई
2: जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पासे ताते गोहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दर

सहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख हुआ सिफत खसामी नूर अरसों कुरसों तद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास

अपरंपर पुरख अपारी जान को कृपा करहु जग जीवन जान नानक पाद सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी।

पाज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो।